चाचा हम जिस समय इंतजार खड़े देखना डांगे टोली मिलने वालों डेरो डेरो चाचा शुक्रिया डेरो डेरो चाचा मेहरबानी जी बिल्कुल जनाब सासु डे इंतजार गड़े पर मुकम्मल लत्तू का बांदी हतम शुलिहा राहुल योवारी भी आदे फिल्म 94 रेडियो जिलबर सवाबई द स्टूडियो ना नेख पने गर हवा पर चप्पो टेक्नोलॉजी पर जोर बारे सासु पदरान हिदमत की हाजिर शुलू हा सबरों को चाहिए नवरती है गुटो कमा दिश हुकुले बारान वरीगी अब या वर सर गर्म गर्म चाहिए वही अल्ला

पता बान न पुई गम छी फिजाज कंदन दखम से मैसेज कई मनाना शुक्रिया फिजा फिजा ने लावा नेक्स्ट सलाम भैया वालेकुम अस्सलाम मी मरियम प्रिंसिपला वाओ जबरदस्त सिंगे प्रिंसिपल ठीक ठाक खैर खैरियत है प्रिंसिपल।

0: सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, और दिल का फसाना सुनना बहुत जरूरी है लिसनर्स। जितने भी लिसनर्स मेरी आवाज सुन रहे हैं FM 94 रेडियो दिलबर सोहाबी के तमाम सुनने वालों को, छोटों को, बड़ों को, और तमाम तरह स्वीट लिसनर्स को मेरी तरफ से, मेरी जानिब से सलाम जी, सलाम कबूल और मंजूर कीजिएगा। अच्छा, अगले कॉलर चेक करते हैं हमारे साथ कौन दे रहे हैं कहाँ से, और इसके बाद मैं उर्दू के ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करूंगा, उसे अपनी आवाज में शामिल करूंगा, और ये कि अपनी बातें भी कुछ थोड़ी बहुत ही करते रहेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। पखेरना पखेर सुख लकम जैना
1: जी।
0: दस माँ लेवने लेवने और लेवने खोर खबरें के

सही सही सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बंडल ऑफ थैंक्स, प्रोग्राम के हिस्सा बनी, प्रोग्राम में आई इरहा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये ताहिरा को सलाम भी कह रही है जी बीच में। बरगैफ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शामिल हो।

ओके जनाब, कुछ मैसेजेस हैं, मैसेजेस को प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। कौन कौन हमारा साथ दे रहे हैं, कहाँ कहाँ से? जनाब प्लीज यो शेयर हुआ करना द मैसेज चार अगले फरियाल मैसेज के जी। फरियाल आपके लिए हम कौन सा वाला शेर प्रोग्राम में शामिल करें जी? फरियाल, फरियाल ने शेर के हवाले से रिक्वेस्ट की है। और हाय, ये हेली की आवाज थोड़ी सी मतलब जो है ना आप एंजॉय कर लें।

वो कहते हैं ना, कहा जाता है ना कि किस तरह होता है मुमकिन ये गवारा करना, किस तरह होता है मुमकिन ये गवारा करना, दिल में बसे हुए लोगों से किनारा करना, और कुछ मोहब्बत के भी कानून हुआ करते हैं, किसको मंजूर है चाहत में खसारा करना। और जिंदगी होती है मीरास, जिंदगी मोहब्बत नहीं होता नफरत में गुजारा करना, और उसकी बख्शिश का भी इम्कान तो होता है जिस किसी शख्स की आदत है कफारा करना। कहते हैं, कहा जाता है ना कि स्वीट लेसन्स पकड़ी जब नब्ज मेरी तबीबे जान ये बोला, वो जिंदा है तुझ में तू मर चुका है जिसमें, हाय हाय। और सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, और वो लोग आज हमको वो आज लोग नहीं, गलत हो गए भाई, बड़ी प्यारी लाइन थी। हाँ, सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे।

0: मेन जांगीरी रोड बानी द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बानी कालू के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313994941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।

सवाबी और इसके मुजाफात में आजान का वक्त हुआ जाता है। बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें।

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM इस्लाम सुन रहे हैं।
1: माँ वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
2: जो उस्ता कालू द पारा शारजी त सिंगल आर्शमा
1: ओहो फमीना बाजार दुबई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दी चटची द दुबई और द शारजा टूले वैरायटी मौजूद दा
2: नुदा सिवाया कना
1: शारजा ज्वेलर्स प्रोप्राइटर जिकोम 65 94
0: रेडियो दिलवर।
3: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन
4: है। दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन
3: रूहानी सुकून ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे
5: ये

मोर क्रीम द बेलडोना कीमत सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए दे बेलडोना ही रिमोर क्रीम बाहर कॉस्मेटिक्स जनरल मेडिकल स्टोर के मिलावी की जी जान थवाले प 200 रुपए पसलोर सो ना प 200 रुपए तासु जान थवाले बेलडोना ही रिमोर क्रीम।

0: मोहतरम समीना पति बांधे कमेंट की हुए माशाल्लाह को ले दे जबरदस्त
1: खुमार खुमारियम
0: जबरदस्त
1: करार करार
0: जड़ी रखा दे चित सास को शो अब इंशाल्लाह समंग दगा बेलडोना चिकम स्टेटस समंग मासर चित दगा कम 0306 नंबर दे
1: खुद तेरा सरा
0: मोहतरम समीना वो दे कलर दासी मोहतरम समीने दा पिंक कलर के मराजी और स्किन कलर के मराजी लगा द्वार राजी माउर तवे पिंक कलर और स्किन कलर दा बद्वाड़ा मिक्स कीजिए नमंग चिदगा बेलडोना कम व्हाट्सएप ते 0306 93 693 93 बदगा व्हाट्सएप स्टेटस माने बहुम तास दगा द केक दगा चिकम पिक्चर दे गबा तास त लगोमा औद दिन लावा का तास सो कोई जमात दगा केक दगा पिक्चर रवलीगा नो बिल्कुल तास बदलीगा मा पदगा 0306 93 693 93 राजी पदा नंबर बानी तास माता मैसेज कोई जी औ माता जरूर आए आए दगा माश नाना जबरदस्त जबरदस्त जी सदर दुकुआट हुई हुई ढेर जबरदस्त है जी मुंगा था चिकम दे आसमा एहसान दे जंगीरी में से डालेगी वेल डन ढेर नाइस डिजाइन दे जोड़ कड़े दे वो वाह जी सबाद चमकनी हुई मातम सेन का नान दावस में दा प्रोग्राम तो प्री दे प्रोग्राम ना बाद दरता सेन कम करता सो उस पर दा प्रोग्राम हो गुमा सबा सबा सबा कस्ता खो खी दा प्रोग्राम बोक मद प्रोग्राम ना बाद बेदर तसेंड कम जी शाले लाए सांद मलकंड वे मातम सेंड का दे प्रोग्राम तमी प्रदे का ना कना बस दा व्हाट्सएप इस्तेमाल हो मा साइलेंट सिंपल गर्ल द सवाब वे मातम रोली का वली ना जरूर अस्सलाम वालेकुम संग बासिता शो नाइस ता समा पशान ही के क्रवली का ब्या हा हा मी सैंपल गर्ल फ्रॉम सवाबी मोस्ट वेलकम सैंपल गर्ल फ्रॉम सवाबी फरियाल द फरियाल शाद सीधी वही मातम वाली बदल लेगा मजी जरूर बदल लेगा ये खान द पेशावर वाई ची मातम रोलेगा जिया वाली बना दिली गुची अतरीडी करीडी नहीं जी जिया सलाम वालेकुम सलाम राजी दस्ता से मिचिनो बाम पड़ेगी दस्तों कवले से चिमुंगता 0306 693 693 राजी पदा नंबर तासु माता में से जुगी जी औकता समात बदा प्रोग्राम के काल कवि नो फिलहाल जला काल नाखलमा दस्ता सु कालु नो बजरु स्टार्ट राजी दस्ता सु हम ढेर से जरूरी और लाजिमी दी ओ दमे सिजुनो नमक किताब से उदा खबर को मा ये छे जसुरी

0: back. Right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं, दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।

सवाबी और इसके मुजाफात में आजान का वक्त हुआ जाता है, बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें।